0: समयको ख्याल राखौं। 6 बज्यो।
1: खरो विषयमा दरो बहस, नेपाली बहस।
2: यस नेपाली बहसका साथमा प्रीति तयारी चाउचाउ।
3: ग्लोबल आईएमई बैंक, सबैका लागि बैंक।
4: डिस होम इन्टरनेट।

एसेंसियल्स। एलजी ले ले आयो नया एलजी एसेंशियल सीरीज। अब किफायती मूल्य में रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एसी को कंप्लीट रेंज, 10 वर्ष को वारंटी सहित 0% नो कॉस्ट ईएमआई। नागरिकता भए पुग्छ, हर एक घर को खुशी, घर घर में एलजी। एलजी लाइफ्स गुड।

0: It's a goal!
1: Hipstar Gold! हर एक वर्ल्ड कप से यो वर्ल्ड कप नहीं करो सेलिब्रेट मिली सब जेनरेशन हिमस्टार टीवी खरीद करना पाउन होस 32% सम्मा को कैशबैक वर्ल्ड कप 2026 को टीवी सीजन पास र एक वर्ष को नेट टीवी पैक सर्तहरू लागू हुने छन् हिमस्टार टीवी उही सेलिब्रेशन हर एक जेनरेशन
2: हिमस्टार फॉर अ कम्प्लीट होम।

वर्ल्डिंग को फेस्टिविटी ऑफर अब पाउन होस एक वर्ष को 200 एमबीपीएस इंटरनेट और नेट टीवी साथ में डुअल बैंड राउटर नोकिया बीकन 1.1 मेश राउटर और नेट टीवी सेट अप बॉक्स मात्र रु 1200 प्रति महीना में शर्तहरू लागू होने छन् छिटो बनेकै वर्ल्डिंग।